चलो ये भी हम जानते हैं, अब सीने पे हाथ रखें। ये क्या है, क्या नाम है इसका? सूरत अल फलक। हम में से कितने हैं जो सूरत फलक की तफसीर जानते हैं, पूरी तफसीर जानते हैं? मैं फिर पूछूंगा, फिर ये ना कहना भी पूछ लिया। सच बोल, नहीं आते कोई मुश्किल नहीं है, सीखने के लिए हम लोग आए हैं ना। मुकम्मल तफसीर, अच्छा तफसीर नहीं आती, मुकम्मल तर्जुमा आता है। दो चार यार और हाथ बढ़ा ले यार, क्या होता है? तर्जुमा मुकम्मल आता है, अभी पूछूंगा दो लफ्ज नहीं आएंगे। जिसे आता है वो पूरी सूरत का तर्जुमा आता है। अल्लाह मुस्तफा, चलो पूरी सूरत तर्जुमा नहीं आता, एक आयत का तो आना चाहिए ना। इस आयत का तर्जुमा आता है? हाथ खड़ा करें या मुझे जरा कुछ कर दे। चले आयत के एक हिस्से का तर्जुमा इसका, गासिकिन इदा वक़त, जानते तर्जुमा क्या है? जो जानते हाथ खड़ा करे। एक बंदा जानता है बस, गासिकिन इदा वक़त का एक बंदा जानता है तर्जुमा। अच्छा देखें, हम सीखने के लिए आए हैं, परेशान ना होना। अच्छा एक लफ्ज तो आना चाहिए ना, ना सूरत का तर्जुमा मुकम्मल आता है, एक आयत का भी नहीं आता, आयत के एक हिस्से का भी नहीं आता तर्जुमा, एक लफ्ज का तो आना चाहिए। अऊज़ु का तर्जुमा सबको आता है, मुझे पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। जानते मायना क्या है अऊज़ु का? पनाह मांगना तो हर बंदा कहते, जो भी कुरान पढ़ता है तो तर्जुमा बरेलवी का पढ़े, दियोबंदी का पढ़े, सब पनाह मांगते हैं कि नहीं? सही मायना कितने लोगों को आता है कि पनाह मांगना क्या है? इबादत है। इबादत का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। अगर गैर से पनाह मांग ली तो उसे क्या कहते हैं? शिर्क फिल इबादत कहते हैं, शिर्क अकबर है। ये कितने लोगों को आता है? फलक के क्या मायना है बोले ना? सुबह गासिकिन क्या चीज है? छा जाना, गासिक छा जाना। अरे क्या हो गया, उल्टा पढ़ते हो तर्जुमा के? वो वक़्फ़ का है, मैं गासिक का पूछ रहा हूँ। रात या अंधेरा, रात को भी कहते हैं, अंधेरे को भी कहते हैं, और वक़्फ़ छा जाना। अस्समद का क्या मायना है? चले सूरतुल फलक तो थोड़ी सी लंबी है, सूरत अल इखलास तकरीबन हम जब जल्दी में होते हैं तो सूरत इखलास ही पढ़ के नमाज जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। समद हम बार बार पढ़ते हैं, समद का क्या मायना है? बेनियाज, सब जानते हैं, ये इधर से सुन के वो बोल रहे। बेनियाज का क्या मायना है? चलो बेनियाज तो तर्जमा तो पढ़ लिया हमने, बेनियाज किसे कहते हैं? जो किसी का मोहताज नहीं, पूरी कायनात उसी की मोहताज हो। अल्हम्दुलिल्लाह। इलाह का क्या मायना है? सब जानते हैं ना, सब जानते हैं इलाह का मायना क्या है? मबूद बर हक, ला इलाह इल्लल्लाह का क्या मायना है? हम सब जानते हैं ला मबूद बर हक इल्लल्लाह। टेक्नोलॉजी क्या है, फेसबुक का लोगो क्या है, YouTube का क्या है, हम जाने या ना जाने कोई फर्क पड़ता है? मुसलमान को या किसी भी इंसान को अगर वो मर जाता है और उसे फेसबुक का लोगो नहीं आता, या उसे YouTube जानते हैं, YouTube होता क्या है, कोई फर्क पड़ेगा उसे? लेकिन अगर मर जाता है उसे ये नहीं माना पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मायना क्या है, फिर फर्क पड़ेगा कि नहीं? आज हमारे बच्चे भी जानते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। मैं वक्त कम है, इससे डबल लिस्ट और भी कर सकता था, मुझे पता है सब का जवाब सही होता। आज का मुसलमान टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, इंफॉर्मेशन और इल्म का सैलाब है, समंदर है, सब रगोते लगाए हुए हैं। हमने भी लगाए हैं, हमने भी देखे, हमने भी जाना है। क्या हमने ये जाना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मायना क्या है? आज मुसलमान उम्मत पीछे क्यों है, जलील क्यों है? आज हमें दुनिया जहाँ की हर चीज़ की खबर है, हर चीज़ का इल्म है।